हे परमात्मा बस एक गल का ख्याल करी मैनू तू ना विसारी मैं ते तेरे अगे बेनती ही कर सकदा रोस कर रहे ने अकाल पुरख नाल हे परमात्मा जे तेरा नाम ही नहीं सी जप सकदा तेरा सिमरन नहीं सी कर सकदा तेरे घर ही नहीं मैं आ सकदा सी मैनू कानू इस जात विच भेजे किसी उची जात विच भेज दें तेरा नाम ते जपदा तेरा सिमरन ते करदा नीवी जात वाले नू नाम जपन का भी हुक्म नहीं ख्याल करो इस समाज की हालत सी इस समाज के अंदर मंदिर विचों कटे हुए नामदेव नू धन गुरु अर्जन साहब ने आवाज मारी आ नामदेव तू मेरे कोला की होया तेनू मंदिर विचों कढ़िया गया मैं तेनू हर मंदिर विच बिठा दिना

आज बने हो सारस्वती बक्ता करके सारस्वती बक्ता करके जुग कोट गणेश के हाथ लखे हो जुग कोट गणेश के हाथ लखे हो।

अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है वाहे गुरु अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत

0: कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे लागे हर फिरे, कहत कबीर कबीर हरी पिछे पिछे फिरदा पे कबीर।
1: ये कड़ी पौड़ी
0: गुरु जेड़ा है वो सिख नू प्यार कर लगता है।

मनुख अपने घर दे सामान इकट्ठे कर रहा है। जे कोई इस नूं जपन दा चेता करांदा है तां कहिंदा जी बिरध अवस्था विच जप लवांगा। हजूर कहिंदे हन उस वेले तेरे कोल कुछ नहीं हो सकना, इस लई जे जपना है तां फिर हुणे ही जप लै। चरण शीश कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जे भा बचन शुद्ध नहीं निकसै तबरे धर्म की आस करे। इस

ठाकर प्रतपाल नायक खसम हमारे नायक खसम हमारे निमक निमक निमक निमक।

बादशाह एदे शिपाही आए ने क्या कबीर साहब तुहानू बादशाह ने याद कीता। कबीर साहब जी उठ के तुरन लगे। कबीर साहब दे प्रेमिया ने कहा, कबीर साहब जे बादशाह ने बुलाया फिर खैर नहीं वरतनी, तुसी जान तो इनकार कर दे हो। पर कबीर साहब ब्रह्म ज्ञानी सन, कह लगे भाई ए हुक्म ए फुरमान सिकंदर लोधी दा नहीं, ए ता मेरे अकाल पुरख दा। जे सिकंदर लोधी दा फुरमान हुंदा ते मैं इनकार कर देंदा, पर जी अकाल पुरख दा फुरमान है ते मैं किवें इनकार करां। नाले एके आ ते नाले शिपाही।

तू मेरे हरी दी समानता है नहीं कि मैं तेनू सलाम करा। ओदी बादशाही जुगो जुग अटल,

बादशाह नु क्रोध चढ़ गया, सिपाहियां नु हुक्म दिता एदे हाथ पैर बन के इनू गंगा दे विच डोब के मार दियो। मैं देखना इस दा राम इस नु किस तरह बचांदा है। कबीर साहब दे हथां पैरां विच बेड़ियां पा के गंगा वाले सिपाही लैके तुर पए।

छिपाई हाली वापस नहीं पहुंची। कबीर साहब पहले ही घर पहुंच गए। कबीर साहब दे श्रद्धालुआ ने बड़ी खुशी मनाई। सारे शहर विच जलूस कढ़िया जा रहे है। कबीर जी कबीर दे राम ने रखिया कीती। बादशाह नूं पता लगा है हाली कबीर मरिया नहीं। फिर सिपाही भेजे ने सिपाहियां ने फड़ लिया। बादशाह कहिंदा है ठीक है जे पानी विच नहीं मरिया इनू अग विच साड़ के मार दे। एक बड़ा वड्डा लकड़ां दा ढेर इकट्ठा कीता। कबीर साहब नूं लकड़ां दे उत्ते बिठा के उत्ते भी लकड़ां चिणन लग पए। चार छफेरे नंगियां तलवारां दा पहर है। ए समझदे ने कि कबीर कोई जादूगर है। कबीर साहब दे प्रेमी रोण लग पए ने पर कबीर साहब अडोल लकड़ां ते बैठे होए अपने श्रद्धालुओं नूं की समझांदे ने।

आगे आप ही हवा। जे अकाल पुरख ने मेनू साड़ना है ते बचा कोई नहीं सकता है। जे उन्हें मेरी रखिया करनी ते फिर मेनू कोई साड़ नहीं सकता है।

पर ओ जड़ा हाथी ओ कबीर साहब नू लताड़दा नहीं। बड़ी कोशिश की थी पर ओ जड़ा हाथी अगले दोनों पैर नवा के कबीर साहब नू मथा

तू हाथी के सवार होंगे, गहने पाके कीमती बस्त्र पाके सिर ते सोने दा छत्र चुला के तू आखे मैं बहुत खुश हो गया, तू भावे समझदार है मैं बहुत खुश।

तब पिता ने किया बेटा वो तो ज्योति जोत समा गई, पर उन्होंने जगह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब जोता जगा रहे। ते पुत्र कहन लगा पिता जी मैं फिर आनंदपुर साहब जावा। पिता ने कहा

पिता ने दिता दिव्या बेटा ये 100 रुपया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणा से रख के मेरे वालों मत्था टेकी 500 रुपया अपने वालों भेट करने वास्ते जेब च पाया धर्मशाला पहुंचे अरदास करके ये सारिया संगत उज्जैन तो आनंदपुर साहब को तुर गए हमने मन में सोचता जाता गुरु का दरबार कैसा होगा क्योंकि उनकी बाणी

संगत गुरु दरबार बैठी जिस तरह आप बैठे। कीर्तन की समाप्ति हुई, कुछ संगतां बैठिया रही तो साहब जी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पूछ रहे हैं, तुसी कीर्तन सुने तुहानू कैसा रसा है। हुण जिहड़े ते रोज कीर्तन सुनते सन कहन लगे महाराज सुभा दा रस है, क्योंकि साडा सुभा बन गया है रोज कीर्तन सुनना। कोई कहन लगा कन्ना दा रस है, क्योंकि कन्ना दे नाल कीर्तन सुने। कोई कहिंदा जुबान दा रस है, क्योंकि मूंह दे नाल कीर्तन कीता। ते साहिब जी सहज धारी नूं पुछदे ने, ओ सिखा तू नहीं बोलदा तेनू कैसा रस आया। और ये कहता है जे मैं आखा सुभा दा रस है, पहला मैं कदे कीर्तन सुने। जे मैं आखा जुबान दा रस है, मैं खादा कुछ नहीं। पर एक गल है, ज्यो ज्यो कीर्तन सुने मन भटके आ नहीं, मन मन दे विच ही टिक गया। आखो सतनाम श्री हो। कहन लगा महाराज ये सिदक ते संतोख दा रस है। आखो सतनाम श्री हो। पाणी सुन के मन विच संतोख और सिदक आ जा। साहब जी कहन लगे सिखा निहाल। एक महीना सेवा की और एक दिन 100 रुपया पिता वाला और 500 अपने वालों गुरु साहबां नूं भेट करके मत्था टेकिया। ते नाले कहन लगा महाराज कुछ बख्शिश करो ताकि मैं हुण घर नूं जावां। कड़ा प्रसाद दिता कि सिखा ये अपने पिता नूं नहीं साडे वालों। एक सरबलोह दा कड़ा दिता जिहड़ा कड़ा असी हाथ विच बन्ने। नाले वचन दिता कि सिखा इस कड़े दा अदब रखी

खुशी आनंदपुर साहब को मिले, पर जिस तरह ही आनंदपुर साहब को बाहर आया ते सारा आनंद गवाच गया। आखो सतनाम श्री माया वाली बिरती फिर जाग गई। जिवें असी कई बार कीर्तन में बैठे होने हैं ये बड़ा आनंद आता, जब गुरुद्वारे बाहर निकलते हैं तो यह आनंद भुल जाता है, होर गल्लां याद आ जाती। इसे तरह आनंदपुर साहब तो निकले तो सारा आनंद गवाच गया। कह लगा मना बहुत माड़ा गीत है, 600 रुपया तो रोड़ के आ गया, एकड़ा प्रसाद दिता है गुरु ने जिहड़ा पिता घर रोज ही बनाता है, एकड़ा दिता है। कहिंदे सन जो मंगेगा तैनू मिलेगा, इस कड़े की अपनी कीमत 4 आने नहीं, इन्हें मैं 1000 रुपए कितों दे देने। आपको सतनाम श्री गुरु उदास हो गया ते गुरु की निंदा करता होया।

ते नाले के है। सिख सिख का सत वणज, सिख सिख का पाओ, दगा सिख मम ना करे पानी अन्न पकाओ। सिख नु सिख नाल दगा नहीं करना चाहिए।

बड़ा खुश। पिता ने पूछिया, सुना फिर बेटा, गुरु दे दर तू की लैके आए? जद के यार गुरु को की लैके आए ते मोरा दिया थैली।

सुत ए पुत्र एडा वडा कोर पाप क्यों कीता तू गुरु दा वचन क्यों बेची। पिता ने समझाया, मां ने समझाया, पर हुण सामने सोने दियां होरां हन। आखो सतनाम श्री हुण सिखिया।

मुनसिफ के अर्चन की रीत है और एक कुदरती गल ते जे कोई सिख्या देवे भी ना ते बंदा कोल कोल बहना भी पसंद नहीं करता ते बहुत घट बच्चे हैं जेडे मापिया की सिख्या ते मनदे ने उन्हां दे झिड़क नूं भी मिट्टी करके समझते एक बारी रसना पवित्र करो प्यार नाल आखो सतनाम श्री राम हरी सिंह नलवा।

ना वो गड़वा बिस्तरे से डोर देता, बिस्तरा गिल्ला हो गया, कपड़े गिल्ले हो गए, हरी सिंह की जान खुल गई और नींदर नहीं आती क्योंकि कपड़े गिल्ले। एक सर्दी उठ सकदा नहीं क्योंकि मां नाल वादा कीता है मैं सौवांगा, पासे मारदा है बिस्तरा गिल्ला, नींदर नहीं आती पर सास संगत मां ते फिर मां है, मां पासा मार के लपी पई अखां बंद पर जागदी, अज मां दा मन बड़ा दुखी हो रहा है

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असि आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चे नाल गल बात पंजाबी विच करते हो ता आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है ता अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल ता इह समा उन्हां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे ता गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना ता इक पासे रिहा, ओह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकदा है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे, असीं तां उस ताते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उनताई है तां ध्यान दियो ते ओह पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असीं तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया तां मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटार हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਇਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮਲੇਛਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੋ, ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ। ਅੱਗੋਂ ਦਾਤੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ।